आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और

0: पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग

0: आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट एनजेडपी का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिता फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इसराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर

0: टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में पांचवें स्थान के लिए प्ले ऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: দিল্লি কেন্দ্রের সমাচার প্রভাত, আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনবেন আজকের কবিতা অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্রদের কবিতা আবৃত্তি। আবৃত্তি করবেন বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ইরিকা দেবনাথ।
6: নমস্কার, আমার নাম ইরিকা দেবনাথ। আমি কবি কুসুম কুমারী দাসের লেখা আদর্শ ছেলে কবিতাটি আবৃত্তি করছি। আমাদের দেশে হবে সে ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে, মুখে হাসি বুকে।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को है जोड़ना है। हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस के साथ 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रिजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में यह संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग

0: स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्य रात्रि 2:30 बजे खुल गया। भगवान महाकाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया और फिर पवित्र राख से सुशोभित किया गया। वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, एक कुशल वक्ता और एक निपुण प्रशासक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली ने प्रभावी संवाद के माध्यम से आम जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनीजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोमांचक नौवें दौर के बाद प्रणेश ने मध्य यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी ओपन टूर्नामेंटों में से एक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 103.7 মেগাহার্জে আকাশবাণী বিলোনিয়া কেন্দ্র থেকে। এখন দেশবন্ধনে অনুষ্ঠানে শুনবেন দেশাত্মবোধক গান বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों तथा पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। वे तोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे। श्री गोयल जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक चलेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाइन ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाइन ने कहा था कि हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है।

देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्यरात्रि 2:30 बजे खुल गया, वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। समिति 3 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। समिति माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और तकनीकी प्रवेश और पात्रता, साथ ही भर्ती तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए कार्य करेगी। समिति प्रश्न पत्र लीक, नकल, परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का प्रयोग, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ और परिणामों में अनधिकृत हस्तक्षेप को रोकने के उपाय सुझाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 354 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: belai hambai kaisa to sai maka phia tabune sumungo kaisa to khoroksa to sai maka tabune sumungo bu joran chimi bu jora bu tarin chimi bu tarik jora commonwealth games thungjaka ba songsa jaka 2326253 kodung number mobile user 0381 आप कुछ नंबर नानी तापोग दी ताकलाई कॉमनवेल्थ गेम्स बुतारी को चेंखा ते बुतारी को पाइखा हेलो
1: लॉन्ग लॉन्ग कैसे हो
0: ए
1: तो जुलाई में तुम्हें
0: तो यागो 23 जुलाई नी सिमे सेकंड अगस्त जोरा ते कैसे सुमुंग तो नहीं और जगह वो बारोट काइबसुक मेडल माखा और स्वीटा ना मामा सिंह सही मने बेले हम भाई काई नहीं सही में कहते बारोट काइबसुक शौकत माखा हेलो কাকরে কাডঙ্গি থঙ্গা তেওসা কল খলাই ফিরি 2326253 কগডং নাম্বার 12 হাপা তাকলানি নৈশাই নিশিদক বিশিনি কমনওয়েলথ গেম হ কমনওয়েলথ গেমস হ কাইবসি সকাত মানকা

0: 0381 बिनीपारा विशालगर विश्रामगंज आमसाई हिंस वो रही रखा टू थ्री टू सिक्स टू फाइव थ्री कॉकडूम नंबर त्रिपुरानी पुला वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कैप्टन मूंग हेलो दिवर कहाम दाखन दुमूंग फाइजिंग थांचिनाय तेगैसे सुमूंग बाय थांचिनाय मेरी कॉम बहुत थमूंग बाय गदालजाक मेरी कॉम बो थमूंग बाय बो गदालजाक तो हेलो
1: कंपनी
0: सादी
1: मेरी कॉम बॉक्सिंग
0: बॉक्सिंग बो बो राज्यनी बा बो हास्तिनी बरक मणिपुरनी बेला हम भाई नुम कहनी सैमा का तेगैसे निन बागै सुमूंग त्रिपुरानी बो प्लेयर बैडमिंटन थमूंग नागन टेनिस थमूंग सकन सोमनाथ देवरमा बेल हमबाई जो बो साल नेशनल स्पोर्ट्स डे होने पालय बेल हमबाई नेशनल स्पोर्ट्स डे बो साल जातीय क्रिया दिवस होने पालय जा ताको अबनी बो चायतुखा मोटामोटी चायतुखे बो सैमाखा हेलो नेशनल स्पोर्ट्स डे बो साल पालय जा सबका ताको विधान सबने आसेमा साल न पालाय जा मेजर डेनचाननि आसेमा साल न जानो भारतनि हकिनि जादुकर जाग बन बनन वुमेन्स क्रिकेट टीमनि कैप्टन मुंग सैमालिया ताकु थंगो थंगो ओ जुता आविष्कार हाइन सिनाइता अब आं साइमा मानि बोले बाके आं बखरगो फालिया नेने आं आबनो सायखनानै तामुनि बेचब तेगैसा सोमुं दिन बागै केराते बु देशनि बा बु हाक्तनि मार्शल आर्ट अब ठीक है सादी कैसे देश चाइना नंग नाय कैराटे मार्शल आर्ट गांके जापान चाइना संग बर आबनो नाहाका जापान तो

नरखुनाई तुम हिंदी तो के राजा जानी और समुंग कितना मजा आ रहा है समुंग खरंग खलका लता मंगेशकर ताय म्यूजिक उनके लक्ष्मीकांत पिरेलाल ताय कोखे खलका आनंद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: लामसुगो साबुन का ताको
1: हाँ
0: साबुन का
1: यंग रोतमपुर ने मानिक क्या करूँगा
0: रोतमपुर ने ताको मानिक बोर साबुन का नाना इसलिए
1: और फोन ने कैसा खाना मुझे मंता
0: सामने खाना ना है
1: दिल के खाने के yang sangat jelas ni dan saya cerai jemput jelas ni pepah jelas ni kejes yang gawat ini Robindro yang kuah ni bijus
0: udah sama ni kok kita mau naik pardesi jake orang sama ngang kenal naik Dake, kena di, takut. Nungbo, tumong nini kena tak sama resamung. Kena namun sengai kok dua ikung di 232-6253 kok dua nambar. Mobile user 03-81 kut nambar nani. Tapung di.

रुखनाय तुम हिंदी तौके आरपन हिंदी तौके नीर सामू रसामुंग खोरंग कलका लता मंगेशकर तय म्यूजिक रेखा लक्ष्मीकांत पेला

0: नरो खुनाई तुमको
1: आई मिलन की रात नी और सामुं अनराधा परवाल ताय उदी नारायण भाई रे सब जग सामुं कथाई समीर ताय म्यूजिक खंगां के आनंद मिलन
0: कमंग ताकुते बुक्सन नरोग नरोग नी

0: हेलो
1: कॉक ठगरा देखे था है
0: हेलो
2: दीवर साहब ताको दीवर ताका दूर तो किधर
0: अत्ता या दीवर कहाँ हम
2: कोई ना ना आनो रतनपुर नी मालिक नो आनो बोकान जैसा खनार मनी चलो आम खना तो जुमन कानून से साबा भी बनो ताको मालिक नो हम बायां
0: अच्छा
2: के तबो कान तंग से कदावा ना कोई ये बोमुंगेर इंतेकाम 1969 साल ने बॉय म्यूजिक लोकीकान पेक किया रहला और गानो आंगे दिखे पंजाब सुंगो जंबू जला ने इन्हें ताकू का करा ताऊ सोल्लो के नम तो उच्च ही तंग
0: नहीं
2: के ताई कोरसा ते कोर जला ने ताकू बीजे
0: इंतेकाम नी बो बो कॉक थाई तमो
2: तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए
0: जम्बू
2: जला नी काकू करा उत्पल देव बर्मा गोलाघाट पीनी बीजे उनके तकाजला ने बहु कोनिका किन्तु तो 100% अभी शुरू तो नहीं आने दिए तो
0: लता मंगेशकर बार मोहम्मद रफी नहीं रसमु
2: हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए 1970 साल नहीं बोए
0: नहीं
2: आतुम लोटा
0: दा
2: तब तो मिली कनाल
0: के दा बेले हम भाई
2: दोनों

नरक नाय दङ हिन्दी तके अपना पन्नी आरो सामुं रसामुंग खरांखालका लाटा मांगेशकालताय महम्मद राफी म्यूजिक गतङ लक्ष्मीकान्त प्यारेलाल ताय ककाय आनन्द

0: हेलो हेलो हेलो ककरेज अरब पाती पाती तेदांग सर चमु खनारे बनो हेलो
1: हेलो सर पैसे मा करंसी का
0: ए सामका
1: सचिन दरसे

ये दिला सिकनरी और रसामु कुमार सनताई अलका यंगी गए सब जगह रसामु ताई म्यूजिक खंगांग के कुकु कोहली आदर्श कुकु कोहली म्यूजिक खंगांग के नदीम श्रावण कॉफ़े के स्वामीनी खबंग ताकुते बुखुसो और रसामु ने लोगी नो तिनी ने पांडा चिपंग माबा से सुने अपुन जा कुलो तंगाई सिकला है उपने सिल चिकला ताकु आसु जरूरत नरोक अन लोगी तमाम बागे पेपला हम बाई जतन काम तंग दी अन्य पन्नो तो शमाला ने को कसारे तीन बागे आसंग सिद्ध जतनो नो बेले बेले हम बाई ते शिकला है उन खनाना तापोग दी शिकला है उन खनाना तापोग दी ताकु पाताशीस नरंग बागे शिकला है उन तो ये फायदों को अंगले माबासा सिनाई जतनो नो पेपला हम बाई

0: पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। श्री गोयल 4 दिन के दौरे पर जापान गए हैं। उनके साथ 200 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतोरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता तथा देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आयगो में पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
3: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई को सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बनाए। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: करूंगी हाँ कि लावरा जो है वो मिठाई नहीं है।
5: हाँ,
4: रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लावरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
5: अच्छा,
4: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहाँ उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब मिश्रित

0: जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है दुर्गा पूजा उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी
1: और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और फिर खा लीजिए।
2: मिठास लेनी है आपको लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
1: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं, रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है, हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग आइए सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
3: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड तीन रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को ये सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं।

0: उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा। शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
1: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
0: बहुत विनय पूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ।
1: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
0: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे, वो यहाँ नहीं है क्या?
0: नहीं,
1: ओह, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा। एक हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा, नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा। मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी
0: जी
1: हैं, आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी, तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई, और
0: अच्छा,
1: फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी, तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है, उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। हाँ सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: जी जी
0: रखिए।
1: जी जी जी धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं
0: जी
1: करता। चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है, और
0: अच्छा,
1: मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या
1: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? उफ, खैर, 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृत वाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी
1: जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरौवत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर

0: कर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी,
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

मुझे आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्री।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं एक गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए। और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको, उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की ना नुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उसे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठे, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
2: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है। और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
1: छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
2: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
1: और कई बार समस्या

0: ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल, और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा, यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी
0: हाँ
1: मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
0: जी
1: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो
0: और
1: जाता है।
0: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना, जो छोटा सा शब्द है, ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: हमें संबल देता है और
0: जी
1: हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा।
0: जी
1: और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, हर मुश्किल के बाद दो चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
0: जी
1: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते
0: हाँ
1: हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारी अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीज़ों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने हैं।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
0: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं
1: बिल्कुल, महान व्यक्ति
0: उन्होंने,
1: जो हुए हैं
0: हाँ,
1: उनके बारे
0: उन्होंने
1: में।
0: सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
1: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
0: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमें

0: नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे ना हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, रहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, यह हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना।
0: इसी
1: और मुश्किल
0: तरह
1: समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो
0: जी
1: इस तरह की बातें कहकर हमारे हमारी हौसला अफजाई करे।
0: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बचे नहीं, 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
1: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत
0: जी
1: सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि
0: बिल्कुल
1: हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शेलो फ्राई करके बाहर निकालें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं, तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां, पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
0: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं, और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये
0: हाँ
1: बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसे ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है,
1: जरा
0: कभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है जाना है, लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वो बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली

प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आमतौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रचिता धुरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
1: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है ये माध्यम से।
0: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी, और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20 से 22 हजार है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1 लाख के ऊपर है तो इसमें से आप समझ सकते हैं।
0: यस जी जी।
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटेक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
0: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर है, हाँ, पर थोड़ा संभाल के।
1: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
0: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
1: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
0: जी,
1: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जरा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं।

0: आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहाँ जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए।
0: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी
1: यस
0: जुल्फे हैं,
1: हाँ
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: बिखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या

0: अच्छा बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: 3 महीने के कितने हो गए? तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: 40-50
1: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए। आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहा है।
0: और पुरुषों में,
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं। और जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं, महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम, बट एबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं।
0: जो आपने टर्म यूज की,
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्निफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है।
0: ब्लू कलर की रोशनी में?
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें। तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं। और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू, सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है। तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
0: जी बिल्कुल,
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन।
0: ये समझने की बात है।
1: तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है। और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के?

0: डर्माटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट,
1: ओके
0: एक डिग्री नहीं है।
1: जी जी
0: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं
1: ओके
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ,
1: जी
0: लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर। यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्माटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी जी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे
0: हैं। और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: सो महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
0: बढ़िया बात,
1: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
0: नहीं,
1: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
0: जी, ये बहुत आज के जमाने की चीज।
1: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
0: जी,
1: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
0: एक तरह से आप जो है वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खान पान ठीक नहीं किया तो इसका असर।
1: सभी चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है। तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं, बोले खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है, पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है
0: इस उम्र में तो सबका होता,
1: सबका,
0: हमारा भी हुआ
1: हाँ
0: था।
1: बिल्कुल यही डायलॉग होता
0: जी। तो इसको कैजुअली नहीं
1: हाँ,
0: लेना है।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक
1: हेयर
0: बार फिर बता
1: शेडिंग
0: दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए। महिलाओं में 30 से 40 बाल।
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं

0: तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शीका काई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना
0: नहीं,
1: घरों में?
0: मेहंदी, रीठा, शिकाई, ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं।
1: उल्टा हो जाएगा।
0: सी इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के, और उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बोतल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
1: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा।
0: सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया, या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल। यू
1: जी
0: विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
1: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगेगी। मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: अलग है।
1: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि
0: वो
1: बाल गोल
0: हाँ,
1: गोल होके गिर
0: तो
1: रहे
0: वो
1: हैं।
0: गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
1: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है वो
0: यस
1: दवाएं खाने के
0: यस,
1: बाद।
0: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
1: यस
0: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
1: ओहो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे।
0: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
1: जी,
0: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
1: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
0: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
1: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी
0: बराबर,
1: दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं और
0: सभी
1: बाल झड़ते
0: बीमारी
1: हैं।
0: को नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें दो चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है, और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रीगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ, तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे आप काउंट करेंगे?
1: बिल्कुल, नहीं, मैं नहीं करूंगा। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
0: नहीं
1: इन
0: नहीं नहीं 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ,
1: मंथ
0: इन
1: है।
0: मंथ,
1: ओहो,
0: इन अ मंथ,
1: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल
0: बारह
1: में।
0: सेंटीमीटर साल में।
1: हाँ, तो 10 साल में।
0: तो आप करिए तो,
1: नहीं, ये
0: हाँ
1: हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल कुल
0: तो
1: मिला
0: वॉल्यूम
1: के।
0: नहीं बढ़ती है,
1: ओहो,
0: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे
1: लेकिन वो
0: हैं।
1: थिन रहेंगे।
0: वो थिन थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% होने में कितने साल लगेंगे? तो वही कहना है वापस, शेडिंग को पहले रोकिए।
1: मतलब समय पर सावधान हो
0: यस
1: जाइए।
0: बिल्कुल।
1: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहां पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस,
1: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है, तो ये गाना
0: जुल्फ अच्छी
1: सुन।
0: होनी चाहिए
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए,
0: सिर्फ।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत। और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि 2 महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो उल्टा का खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी की वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
0: चिंता की बात है।
1: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
0: जी
1: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
0: अब मुझे लगता है एक गाना

0: कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है.
0: जी,
1: या
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है. स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है. कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो किसी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कारण से अच्छी नहीं है ना. इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड्स सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं. तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर.
0: बिल्कुल अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी
1: या
0: है।
1: बिल्कुल.
0: अच्छा, आप ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है।
1: बहुत बड़ा भ्रम है.
0: जी हाँ।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है,
0: जी
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं. अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे. एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है. क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है।
1: पर सेम जीन्स

0: बंधे हुए हैं,
1: जी
0: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है। एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
1: तो ये समझने की जरूरत है।
0: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
1: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: यस।
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुक

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन किसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: से गाना सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध लगातार मजबूत और व्यापक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपसी हितों और विश्वास पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर कल दो दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले

0: सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद WR खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिल पीपल्स यूनियन से की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में आज शाम नीदरलैंड्स में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Speaking at the meeting, Dr. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in areas of economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over a personal message from Mr. Modi. Dr. Jayashankar said the two sides had held a meeting of the Intergovernmental Commission and described the outcome as positive. He said cooperation between India and Russia has grown significantly across several sectors, including trade, energy, fertilizers and nuclear cooperation. The External Affairs Minister also said Prime Minister Modi looks forward to meeting Russian President Vladimir Putin at the SU summit and welcoming him to India for the BRICS summit. He added that the two leaders are expected to hold their annual summit at a mutually convenient time. Dr. Jayashankar said the developments reflect a strong picture of cooperation between India and Russia. Earlier in the day,

0: আকাশবাণী মিলনিয়া, এতক্ষণ শুনলেন প্রথমে কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা সংবাদ এবং এরপরে পর্যায়ক্রমে ককবরক স্থানীয় বাংলা সংবাদ আগরতলা কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন মনোরঞ্জনী, একই হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান, ছবি রিফিউজি। অনুষ্ঠানে প্রথম গানটি শুনবেন আরাকা ইয়াকনিক এবং সোনানিগমের কণ্ঠে।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लूंगी।